0: सब रोग गवाय राम।
1: आप जी रोजाना इस अस्थान तो अमृतमयी बाणी दी लड़ीवार शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करदे आ रहे हो। धन धन गुरु रामदास पातशाह जी वल्लों वडहंस राग दे विच जो पावन शब्द उचारण किया, जिस विचों पहले दो पदियां दा पाठ विचार कल दे दीवाना विच आप जी सरवन कर चुके हो, अगलेरे दो पदियां दी विचार सतगुरु महाराज जी कृपा करके सानू जोड़ लैण। ये पावन बचन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी पावन अंग 574 अते 75 दे उपर सुभाईमान हैं। जप हर सतगुरु महाराज पातशाह जी कृपा करते ने, हरी परमेश्वर जिदे नाम नू असी जपना है। जदों असी बार बार परमेश्वर दे नाम नू जपांगे तो एक दिन परमेश्वर दा नाम सानू प्यारा लगन लग जाएगा, साडे मन नू पा जाएगा। शुरुआती जदों असी शुरुआत करनी है नाम जपन दी, उदों नाम चंगा नहीं लगेगा, मन नूं प्यारा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मन नूं विकार ने ते विकारां दे बोल ही मन नूं चंगे लगदे ने। मन बुरियाइयां दे विच है, इसलिए बुरे बोल इस मन नूं प्यारे लगदे ने।

ईश्वर दा नाम प्यारा लगन लग जाएगा। इनू समझण दी कोशिश करिए कि जे नाम प्यारा नहीं लग रहा, ये रब्बी बाणी सानू प्यारी नहीं लग रही, ते जदों तुसी नाम सुनोगे भावें वह पाठ रूप विच, भावें कीर्तन दे रूप च, भावें विचार दे रूप च, तुहानू आलस आ जाएगा, नींद आउणी शुरू हो जाएगी, मन दे विच कई तरह दे फुरने बनने शुरू हो जाणगे। इहदा मतलब हजे मन नू परमेश्वर दा नाम प्यारा नहीं लगा। ते जदों मन नू परमेश्वर दा नाम प्यारा लग गया, फिर आलस नहीं आएगा, फिर मन दे विच फुरने नहीं बनेंगे। हुणे अपने अपने अंदर आपां सारिआं ने देखणा है कि जदों मैं दुनियावी कोई गल सुणा तां की मेरे मन दे विच आलस आउंदा है, ते जदों मैं परमात्मा दे नाम नू बाणी नू सुणा ते की मेरे मन च आलस आउंदा है। गुरबाणी विच महाराज ने बख्शिश कीती है, बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। इहदा मतलब नाम प्यारा नहीं है, नाम चंगा नहीं लगता, मन नू इह भाउंदा नहीं, बुरे रस्ते ते चलण लई तां मन आलस त्याग दिंदा है, पर जदों होवे बंदगी दी नाम दी कमाई दी गल उदों मन आलसी हो जांदा है। इसे तरह दुनिया दे बोल सुनण लई किसे दी बुरियाई, किसे दी निंदिया, किसे दी चुगली, फिर अखां खुल जांदियां, बंदा सावधान हो जांदा है। पर जे किते नाम नू सुनना पै जाए तो उसे वेले आलस आ जाएगा, फुरने आ जाणगे, शरीर जड़ा फिर वो टिक के नहीं बैठेगा। इत्थों ही आपां अंदाजा ला लईए कि नाम प्यारा लग्या जां नहीं लग्या। गुरु रामदास महाराज कहिंदे जप हर हर, जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम। हरी दे नाम नू जप जप के, जप दे पा अखर नू सियारी है के, जप के, और दो बार महाराज ने उच्चारण किया है, जप हर हर, जप हर हर, हरी दे नाम नू जप जप के। नाम जिहड़ा जपिया परमेश्वर दा, मेरा मन भाया राम, ओह हुण मेरे मन नू भा गया, मेरे मन नू प्यारा लगदा है। जदों असी बार बार नाम जपांगे फिर वह प्यारा लगना है। एक इंसान जिहड़ा सानू जानदा नहीं, असी उहनू नहीं जानदे, साढ़े कोल कोई उहदा नाम लवे असी कहांगे असी नहीं जानदे, पर जदों कोई बार बार आके उहदियां गल्लां करे, उहदियां गल्लां करे, फिर अंदर खिच पैदा हुंदी है कि ऐसे इंसान नूं मिलना चाहीदा है। जदों उहदा संग हुंदा है, संगत हुंदी है, फिर उहदे नाल इक प्रेम बन जांदा है। भाई लहणा जी अपनी हट्टी ते सौदा तोलदे आ, जदों सौदा तोलदे आ ते गुरु नानक नाम लेवा गुरु के प्यारे सिख आ के सौदा भी लेंदे आ ते नाल नाल बाणी भी पढ़ी जांदे आ, और बाणी उच्ची उच्ची पढ़दे आ तां भाई लहणा जी दे कन्नां तक आवाज़ पहुँचदी है, सौदा तोल रहे आ ते कन्ना च बाणी दी आवाज पै रही है। एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, वीह दिन, महीना, रोज जदों भी आना बाणी पढ़नी ते भाई लहणा जी ने सुनना, एक दिन सुनदे सुनदे खिच पैदा हो गई कि जिदी ये बाणी भाई जोध जी पढ़दे आ, मैं एक दिन

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਚਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਹੈ। ਜਪ ਮਤਲਬ ਜਪਦੇ ਰਹੋ, ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਪ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖ, ਮੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ। ਮੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜਪਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੋਗ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਦ, ਬਿਆਦ, ਉਪਾਦ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਆਦ, ਆਦ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦ, ਬਿਆਦ। ਬਿਆਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
अंदर साह लैण नाल पता नहीं किन्नियां बीमारियां शरीर नूं लगदियां। कुदरत ने सानू नवा नरोवा रखण वास्ते बहुत शुद्धता दिती सी, सानू पानी भी शुद्ध दिता, हवा भी शुद्ध दिती, पर असी की किया अपने मतलब वास्ते हवा भी असी दूषित कर दिती और पानी भी दूषित करता। हुण जदों पानी पींदे हां फिर बीमारियां लगदियां ने, जदों हवा साह लैंदे हां तां बीमारियां लगदियां ने, फिर असी मिट्टी भी दूषित कर दिती, इहदे विच जहर मिला के स्परे कर करके असी मिट्टी भी दूषित कर दिती है। हुण इहदे विचों जिहड़ा फल अनाज पैदा हुंदा है वह भी सानू बीमारियां लगा रहा है, उहदे नाल भी बीमारियां लग रही हैं। मन का रोग है आद और ब्याद रोग जिहड़ा है, आद ब्याद ये शरीर दियां बीमारियां उपाद। महाराज जी कहिंदे ये तीन रोग इंसान नूं लगे हुए है, आद ब्याद उपाद। उपाद हुंदा है कला कलेश झगड़ा, जीवन दे विच हर वेले कलेश ही कलेश है, हर वेले झगड़ा ही झगड़ा, ये भी एक बड़ी वड्डी बीमारी लगी हुई है, बड़ा वड्डा रोग है। पर तिन्ने रोगां तो छुटकारा हो सकता है जे परमेश्वर दे नाम नाल जुड़िया जा सके। साडी अरदास हुंदी है ना, तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, तांको बिघन न को लागे जांकी प्रभ आगे अरदास। और देखो शरीर दे जड़े रोग लगे है वो शरीर नाल ही एक दिन मिट्टी हो जाण खत्म हो जाणगे। जदों शरीर ने अग्न भेट होना है तो शरीर दे रोग भी नाल ही सड़ जाने हैं। पर जिहड़ा मन दा रोग लगा, मन दियां बीमारियां ने ये नहीं खत्म होनियां, ये अगां फिर नाल जानियां ने, ये लंबेरी बीमारी है। इसलिए इनू होमे दीर्घ रोग, दीर्घ मतलब लंबी बीमारी है। जे इनू इस जन्म दे विच खत्म ना कीता ये बहुत अगां तक ये बीमारी तेरे नाल चलेगी, क्योंकि पिछां तो भी ये बड़ी लंबेरी बीमारी चलती आ रही है, ये होमे दी बीमारी। सानू सतगुरु महाराज जी ने यह रब्बी बाणी दिती है, सर्व रोग का औखद नाम। सर्व रोग, सर्व मतलब जिन्ने भी रोग ने, भावें वह कलेष है, भावें वह आद है ब्याद है उपाद है, भावें वह मन दे रोग ने तन दे है, भावें कला कलेष है, ये सारे ही मिट जाणगे जे तैनू किते नाम दी दवाई लैण दी जाच आ जाए। तां क्योंकि डॉक्टर जड़े आ वो दवाई दे नाल नाल परहेज भी कहिंदे आ रखण नूं, ते जे महाराज ने सानू गुरबाणी दी दवाई दित्ती है ते नाल परहेज भी कहा कि आ परहेज रखी, ये ना होवे कि दवाई भी खावें ते परहेज भी ना रखें, फिर तू कहें जी दवाई दा असर नहीं हुंदा। गुरबाणी दे विच एक बहुत ने वैसे ऐसे बचन जिदे विच सानू ये समझ आउंदी है भी किड़ा किड़ा परहेज रखण वास्ते महाराज ने कहा भी आ चीज़ां ते काबू रखी, आ चीज़ां ते कंट्रोल रखी, फिर तेरी गुरबाणी दी दवाई तेरे ते असर करेगी। हरजन राम नाम गुण गावे, ये है दवाई खानी, हरजन राम नाम गुण गावे। मारे कहिंदे पर ध्यान रखी कोई निंदिया कोई चुगली कोई बुरियाई, ये ना एक एक परहेज रखण नूं कहा, किसे दी निंदिया करनी किसे दी बुरियाई करनी इहदे ते कंट्रोल रखी काबू रखी। अपना गुण नहीं तू गवाउणा लोकां दे मगर लग के। कई वारी ना डॉक्टर ने कुछ चीज़ां सानू खाण वास्ते छड़ियां हुंदियां भी तू ये खानियां नहीं तू देखणियां भी नहीं, खाना तो दूर दी गल है, तू इन्हां चीज़ां वल देखना भी नहीं है,
पर जदों कोई ऐसी संगत मिल जाए जिदे विच ओ जड़ियां चीज़ां मैनू डॉक्टर ने मना कीतियां ओ खा रहे होण ते मैं उन्हां नाल रल के मैं भी खा लवां ते फिर उत्थे नुकसान ते होएगा ना, फिर उत्थे डॉक्टर की दवाई की करेगी। उत्थे मैनू काबू रखना है। चार जिहड़े मेरे सर्कल दे बैठे हुए खा रहे ने उत्थे मैनू काबू रखना भी मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि मैं नाम की दवाई ले रहा। हरजन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। ये ना होवे कोई निंदा करदा होवे ते तू अपना गुण छड़ के तू भी निंदा करन लग जाए। तेनू परहेज रखन लई आखिया है, तू इहदे ते काबू रखना है। कोई बुरियाई करदा है करी जाए, तू मगर लग के अपना गुण नहीं छड़ना। जे तू भी निंदिया करन लग गया, चुगलियां बुरियाइयां करन लग गया, फिर ये असर किदां होएगा दवाई का। महाराज कहिंदे पर तरिया रूप न पेखै नेत्र, ये कंट्रोल कर काबू कर। इस तरह के बड़े परहेज महाराज ने दसे ने गुरबाणी दे राही। कन्ना राही परहेज कर, अखां राही, जुबान राही, इंद्रियां राही, पैरां दे राही भी तू परहेज रखना है। तू माड़े रस्ते नहीं जाना, गलत रस्ते नहीं जाना। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। तू इन्हां पैरां नाल किहड़े रस्ते चलना है, पर जे तू पुठे रस्ते चल पिया तेरे दवाई की करेगी। इस वास्ते महाराज कहिंदे तेरे सारे ही रोग दूर हो जाणगे क्योंकि ये नाम एक ऐसी दारू दवाई है। तेरे सारे ही रोग दूर हो जाएंगे, आद व्याद उपाद। पर उदे लई तेनू परहेज रखना पैना है और बार बार तेनू गुरु दे सन्मुख होके परमेश्वर दे नाम नू मुख तो जपदे रहना है। तां साहिब कहिंदे मुख गुरमुख, मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरु दे सन्मुख होके मन दे राही मुख तो जदों नाम जपिया ते जप जप के सब रोग गवाया, सारा रोग दूर हो गया। मन दे जिन्ने रोग से भयानक वो मन तो वो जिन्ने भी रोग सब दूर हो गए, मिट गए, मन नवा नरोवा हो गया। गुरु महाराज ने साडे ते इन्नी कृपा कीती है कि ये गुरबाणी विच इन्नी बख्शिश है कि मन दे नाल नाल तन भी अरोग हो जांदा है, नवा नरोवा। जदों भाई प्रेमा जी गोइंदवाल साहब पता लगा मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जमकी फंदा, भी वो वैद बड़े वैदां कोल भाई प्रेमा जी गए ने पर किसी ने तन दा कोड़ नहीं दूर किया, तन करके कोड़ी हो चुके सन। बड़े वैद हकीम मिले पर हुण पता लगा कि एक पूरा वैद आया गोइंदवाल साहब दी धरती ते गुरु अमरदास महाराज दे रूप विच, ते रिड़दे रिड़दे चले गए क्योंकि पैरां तो तुरिया नहीं सी जांदा। गोडियां ते हत्थां दे सहारे रिड़दे रिड़दे पहुंच गए। सारा शरीर जख्मां नाल भरिया पिया है, पस दे नाल भरिया पिया है, ते एक बार साइड ते बैठ के ते कह रहे ने मेरा गया कछोटा लद्दा जी, मेरा गया कछोटा लद्दा। हुण समझ किसे नूं ना आवे वी ये पढ़ की रहे आ। जदों बच्चा तोतला बोलदा ना तो किसे नूं समझ नहीं आउंदी, पर मां नूं समझ आ जांदी है वी ये की बोलदा है क्योंकि मां नूं पता है गुरु की है। गुरु वैद भी है, गुरु मां भी है, गुरु पिता भी है, गुरु साडे वास्ते भरा भी है, मित्र भी है। असी किसे रूप विच गुरु महाराज नूं मिलीए तां सही, वैद दे रूप च मिल लो
ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਕ ਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਤਨ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਪਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਲੱਦਾ, ਲੱਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੀ ਚਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਨਰੋਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।

हे वाहिगुरु जी, मैं पापी हाँ, निर्गुण हाँ, दीन बन के आया हाँ। पहला आकड़ा सी, जो बार का जीवन सी ना, पहला आकड़ा सी, हुण जो अंदर देखिया तो दीन बन गया, निमाणा हो गया। हर दयाल ददे नू दो लावां लगियां ने, वो ऐसे असी पढ़ते हाँ, ददा और सिहारी, फिर ईड़ी ऐड़े नू कन्ना ते लला दयाल। कई बारी उत्थे भी असी ईड़ी विच्चों दी कढ दिंदे हां, दयाल पढ़ दिंदे हां, विच्चों ईड़ी निकल जांदी है, उह सिहारी असी ददे नू ला दिंदे दयाल। उत्थे है दयाल, इत्थे है दयाल, इत्थे दो लावां ला के महाराज ने उचारण सेम ही करता। कहिंदे ने हे वाहिगुरु जी, तुसी दयालु हो, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, तुहाडे वर्गा दयालु कोई नहीं है। शरण आया मैं, तुहाडी शरण विच आया हाँ, मैं पापी हाँ, निर्गुण हाँ, मेरे वर्गे पापी निर्गुण नू अपने

दरते आया कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण न बिचारो कोई माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत यही मैं पापी हां तुसी मेरे अंदर दे पाप नू धो देन वाले हो इसलिए तरस करो मैं तुहाडी शरण दे विच आया हां।

दुख रोग संता पुत्रे सुनी सच्ची वाणी, संत साजन पै सर से पूरे गुरु ते जानी सुनते।

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाम।

आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो। हुक्म अनुसार जीवन जीवन दी समर्था बख्शो। अखर वादा काटा भुल चुक माफ करनी। सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन। नानक नाम चढ़दी कला।

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती समर कैम। गुरु नानक लेते आए फिरंगद गुर ते अमरदास राम दासा हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद न सुमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सुमरै करनो निदावेताए। सब थाई होय सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी। सब थाई होय सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपया वंड सकिया देख चलाई तेग वाही। देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा ली कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी के सांसवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तर सियारे आई तो देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जियां दे दर्शन स्नान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मनी वा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे दार। सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो।

दोहरा गया भैया काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को मिल बोच है। राज करेगा खालसा खुआ।

दर्शन परसिय गुरु के, जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी, नूर अरसो कुरसो चटिया तुद दिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दे कटिए सजन सचा पातशाह, सिर शाह दैशाहो जिस पास बैठे आ सोही है, सबना दावे सा हो।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੁਧ ਵੈਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ, ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਤੇ ਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਖਸਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਤ, ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਿਹੇ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ, ਜੈਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹੇਂ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਉ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਾਈਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ, सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पौ करया उड़े उड़ आवे सै कौसा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में ही सिमरन करया सावने धानी दसे अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परा भरिया सब निदान दसे अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्यावहीं सब त्यावहीं तुझ जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दयावह संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पैखारी जी सब तेरे चोज बडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अबर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव है जो सेव है तुझ जी जन नानक तिन कुरबाना हर ते आवहे हर ते आवहे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैना हर ते आया जी तेना टूटी जम की फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ते आया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बयंत बेयंता तेरे भगत सलाहन तुझ जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तपहें जपहें बयंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जे बड़े अबर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुझे आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुझे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुझे आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई अस महला चौथा तू करता सत्यार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सवनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुदे आप विछोड़िया आ मिलाया तू दरिया ओ सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल वियोग मिल विछोड़िया संयोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुझ में दूजा अवर ना कोई तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सर्व रड़े पाईले निवासा पाणी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चले हम दिखा तह डूबियले मान एक न चेतस मूड मना हर बिसर तेरे गुण गलिया रहो ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी शरणा जेरा तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुक दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा किते ना काम मेल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रख हो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाद रच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो आप हादे मोहे बचाबहो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सबै रिनको आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है, चुनचुन शतर हमारे मारी है। आभाद ने मुझे उभरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा। राघ लो मुहे रखण हारे, साहिब सन सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले वरे की पीर पछाणत। चिंटी दे कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के बड़ बड़ की जाने। जाव उदकर्क करा करतारा, प्रजातर्त तव देहे अपारा। जब आकर्क करत हों कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे। तुम सब हीते रहत नर आलम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभव। ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको भेवना पावत बेदा। ताको कृपाहण अनुमानत, महामूड़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कहीं पूपा। अंडज रसे तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी। कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आ जुगा स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवात उत्पाता, सकल मलेश करो रणगाता। जे आसत हो जे तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जौन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट न है ऐ है। रक्षा होए ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हरेओ ताके तार तनक मैं हरे हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह शवाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे ओबारा। जिन नरे नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी। सर्वठो मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी। सर्वठो मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहें हम एक ना जाने ओ। श्री असबाण कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखाने ओ। दोहरा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार। बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार। सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार। बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार। राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां। शब्दो तंगावो हरी केरा मान जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना। अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो वसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सच्चे साहिबा क्या ना ही घर तेरा। घर ता तेरा सब किच है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या ना ही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जै ना भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जेनो इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहों, जिस दियाँ ये वड़ियाइया, कहे नानक सुनहो संतो, शब्द तरो पे आरो, सच्चा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच तिद घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे, कला जित करता रिया, पंच दो तुद बस कीते, काल कंटक मारिया, तोर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर के लागे, कहे नानक तस कोवा, तित घर अन्नद बाजे, आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पाए सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुनते पनी कहते पवित, सतगुर रहा पर हुरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनी कहते पवित, सतगुर रहा पर हुरे,

मुंदामणी महला पंजवां थल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जेको खावे जेको पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसा चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ

तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वै हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजुली पुन वड्डा है, का डंडौत पुन वड्डा है रहाओ, साकत हर साधना जानिया, तिन अंतर हो मैं खंडा है, ज्यों ज्यों चलै चुबै दुख पावै, जमकाल सह सिर डंडा है, हर जन हर हर नाम सुमाणे।

सैभं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख वाक्य महला पंजवा आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्व रहो भरपूर सगल कट रहो व्यापे व्यापत दिखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अभिगत आपे आप उत्पत एक तू ही एक अन्ना ही तुम पत हर अंत ना ही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर एक जिही क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर हिते पर अपर अपार पर आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तर ओपत पर लो एक कै निमक तो कर आन ना ही समसर उज्जियारो निर्मर कोट पराछत जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर एक जिही क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर्यो सब में आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप ही तारण तारे कुदरत है देखारे बरन चिहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर एक जिही क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार सर्व गुण निदानंग कीमत ना ज्ञानंग त्यानंग ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानंग मन तन तेरो प्राणंग एक कै सूत है जहानंग कवन उपमा दियो बड़े ते बड़ानंग जाने कौन तेरो पेयो अलक अपार देयो अकल कला है प्रभ सर्व को तानंग जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर एक जिही क्या बखाने हाँ के बल बल बल

गुरु गोर गोर करहे गुरु हर पाइय उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिवलाइय फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरत शब्द गुर त्याइय अमृत प्रवाह छुटकांत थद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइय नाम निर्वाण निदान हर उर्तर हो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाइय गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गण तरह तेतीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर करह तरयो पहलाद गुरु मिलत मुन जन रे तरहे नारदाद सनकाद हर गुरमुख है तरहे इक नाम लग तजो रस अन रे

दारू पीस माए कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कह सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेवक संतोख।